वर्तमान र भविष्य को पूरा जानकारी को लागि ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम प्रसाद सुवेदी को साथ में नेपाल भर एकै साथ प्रसारण हुने कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु सुन्न नभुल्नु होला।

लेडिज जेन्ट्स का आधुनिक डिजाइन अनुसार का कपड़ा सिलाइन को साथ ही सरकारी तथा बोर्डिंग स्कूल कैंपस का ड्रेस सुपथ मूल्य में तैयार कर।

0: 물이 에러다? 라우.
1: 아하, 코티 라므로 먹을 수트라? 까바도 라고.
0: 까바도 오노니? 멀리 디디바니 순사리 거르거나 우드고 바다 라고니?
1: हजुर हामी कहाँ नयाँ तथा पुराना आकर्षक डिजाइनमा सुनचाँदीका गरगहना अर्डर अनुसार तयार गरिन्छ।
0: दिदीबहिनी सुनचाँदी गरगहना उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर मेनुका बराइली सम्पर्क नम्बर 9818-3274-73 9861-7549-88 9861-7549-88